कि मैं बड़ा ऊंचा, मैं तो हमेशा ये भी कहना कि मैं बहुत नीवा हूं। मेरा बहन उठना भी नीवियां दे नाल पर एक गल से।

एक कै हरी हरी ए ऐसा एक शुभ ते सच्चा विचार है जिसनु एक सच्चा ते सुच्चा भगत ही अपने जीवन दे विच कह सकता है क्योंकि जिसका विचार एक परमात्मा दे नाल मिल गया जिसका हर रोम रोम प्रभु चरणा दे विच रम गया और जिसका हर श्वास परमेश्वर दे नाल मिल गया ऐसा भगत ही ये कह सकता है कि हमारे एक है हरि हरि। आन अवर सिंजान न करी ओ परमात्मा अपने भगत नू गुरु राही नाम देवांदा है जैसा कि मालिक ने शब्द दे विच फरमान कीता है।

जप भी करता है और यथा शक्ति अगर ज्यादा कोशिश करे ते तप भी कर लेंदा है। आम देखन दे विच आउंदा है कि रब दे नां ते कई व्रत भी रखते हैं।

ताप जो तप है, व्रत है, नेम है, आचार तो मतलब करैक्टर है मनुख दा, और व्यवहार जो रोज दा व्यवहार करदा है, जात जो कम तो पहचानिया जांदा है। साहिब फरमान करदे हन कि ए सारा कुछ जे मनुख करदा होया अपने गुरु दे अर्पण कर देवे, ते मानो के जो त्याग दे विच उसनु सुख प्राप्त होवेगा, जो शांति प्राप्त होवेगी, ओहो ही सच्चा सुख है और ओहो ही सच्ची उसनु शांति प्राप्त होवे। साहिबां दा फरमान है कि जे कोई ये चाहे कि मैं महा आनंद दी प्राप्ति कर लवां, ते महा आनंद दी प्राप्ति है कि उस मालिक दी कीर्ति कीती जावे, उस मालिक दा जस गाया जावे। जैसा कि गुरु नानक पातशाह ने अपने जीवन दे विच कीता, अपने जीवन दे विच उन्हां ने होर कोई योग नहीं कीता, इको ही योग कीता कि उन्हां ने अपने प्राणा राही प्रभु दी कीर्ति कीती। इतना गाया प्राणा करके, इतना गाया कि उन्हां दा जप ही ज्ञान हो गया, उन्हां दा तप ही ज्ञान हो गया। और साहिब फरमान करदे हन कि जेड़ा उस परमात्मा दी कीर्ति सच्चे दिलों करदा है, ओ मालिक दी प्राप्ति दे विच सफल हुंदा है।

परम सत्कार योग सत संग जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। बड़भागियों दूरों दूरों चल के करो गीत अंध्या संकोच के श्रद्धा प्रेम भावना लेके जागत जोत सतगुरु गुरु ग्रंथ साहब जी के चरणों विच पुजे आके गुरमुख प्यारियां तो गुरबाणी का कीर्तन गुर इतिहास सरवण कीता। जिन्ना समा होर महाराज बख्शदे ने अज इस पंडाल का पंजवा समाप्ति का दीवान है। सारियां संगतां गज बज के बोल के श्रद्धा भावना नाल जिहड़ी संगत बाद विच आ रही है शांति दे नाल गुरु महाराज दा अदब मुख रख के जिथे जिथे जगह मिलदी है सतगुरां नूं हाजर नाजर समझ के बैठना ते लाहा प्राप्त करना। बहुत वड्डी किरपा होवे उदों सतगुरु पातशाह जी किरपा करदे ने नगरां नूं गुरमुख प्यारियां नूं घर विच सेवा ते सिमरन दी दात बख्शदे ने। बाकी दातां जरूरी हन जीवन दा निर्वाह माया गुजरान है बहुत जरूरी ने पर मनुष्य दी समझ ज्ञान इस तल ते रुक गया कि अपनी जरूरत नूं मंजिल समझ बैठे। एक मंजिल हुंदी है एक लोड़ हुंदी है जरूरत। जरूरत तो बिना मंजिल ते पुजिया नहीं जा सकदा पर जे मंजिल ना आई ते लोड़ां व्यर्थ गईयां। जरूरत ते मंजिल इनू जटकी भाषा विच समझ लो जो कणक बीजी गई है रे बूटे दी जरूरत है पानी बूटे दी जरूरत है गुडाई करनी बूटे दी जरूरत है। ते गुरमुख प्यारियो मंजिल की है झाड़ निकले दाने पैदा हो। हुण दोवां दा संबंध किन्ना है ते गुरमुख प्यारियो सेवा तो बिना खर्च तो बिना बूटे दी जरूरत तो बिना झाड़ नहीं निकलना। पर जे झाड़ ना निकलिया वो रे पानी व्यर्थ गया के आखो सतनाम। झाड़ की है वो भी तुहाडे सामने दी क्रिया है। गुरबाणी ने तो फैसला किया है आ जिहड़ी बाणी पढ़नी है ना नितनेम करना ये क्यों शुरू किया कीर्तन क्यों शुरू किया कथा क्यों शुरू की लो जे तुसी सच गल समझो इन्हां दी लोड़ नहीं सी। ये मजबूरी है मनुख दी समझ लो गुरमत विचों एक सानू अख दती है एक गुरमुख प्यारे ओ कन दता है फिर मत दती है समझण वास्ते। जेड़ा आदमी देख के समझ जावे उनू बोलने दी लोड़े नहीं हुंदी। जेड़े बंदे नू देख के समझ आ जावे आ चीज आ है उनू बोल के दसण दी लोड़ नहीं। जिनू दिखे ना उहदे वास्ते बोलना ही साधन है। अंधा बंदा उनू कहना पऊगा तेरे मूहरे चिक्कड़ है भी पासे हो जा उत्थे बोलने दी लोड़ पई।
ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਅੰਨਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕੰਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਨਾ ਸੁਣਦਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਦੋਏ ਗੱਲਾਂ ਗਈਆਂ, ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਦੇਖ ਕੇ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਨਾ ਸੁਣ ਕੇ ਸਮਝ ਸਕਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਤਰੀਕਾ ਫਿਰ? ਉਹਨੂੰ ਬਾਂਹ ਤੇ ਫੜ ਕੇ ਲਿਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਅੱਜ ਕੇ ਖੁਸ਼, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਦਿਖਦਾ ਨੀ, ਕੰਨਾਂ ਤੋਂ ਸੁਣਦਾ ਨੀ। ਜੇ ਦਿਖਦਾ ਹੋਵੇ ਦਿਖ ਜਾਵੇ ਮੂਹਰੇ ਚਿੱਕੜ ਹੈ, ਜੇ ਸੁਣਦਾ ਹੋਵੇ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਦੂਗਾ ਕੋਈ ਪਾਸੇ ਹੋ ਜਾ ਭਾਈ ਗਿੱਲਾ ਮੂਹਰੇ ਕੰਡੇ, ਇਹ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਫੇਰ ਉਹਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਜੇ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬਾਂਹ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਹੀ ਪਾਸੇ, ਇੱਥੇ ਵੇਖ ਲਓ ਦੇਗ ਵਰਤੂਗੀ। ਹੁਣ ਜਿਹਨੂੰ ਦਿਖਦਾ ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਥਾਲ ਵਾਲੇ ਨੇ ਆਉਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੱਥ ਕਰ ਦੇਣੇ, ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਦਿਖਦਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮੋਢੇ ਤੋਂ ਹਿਲਾਉਣ ਬੋਲਣਾ ਪਊਗਾ, ਲੈ ਭਾਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਲੈ ਲੈ, ਉਹ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਸੁਣ ਕੇ ਹੱਥ ਕਰ ਦੂ। ਪਰ ਜਿਹਨੂੰ ਨਾ ਦੇਖੇ ਤੇ ਨਾ ਸੁਣੇ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਕਿਵੇਂ ਦਊਂਗੇ? ਉਹਦੇ ਤਾਂ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਹੀ ਜੋੜਨੇ ਪੈਣਗੇ, ਅਜਕੇ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਉਹਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਦਿਖਦਾ ਨੀ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਨੀ ਗੁਰਮੁਖੋ। ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਨਾ ਦੇਖਣਾ, ਕੰਨਾਂ ਤੋਂ ਨਾ ਸੁਣਨਾ, ਇਹ ਬੋਲਿਆਂ ਤੇ ਅੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਕਿਹਾ ਕਰੋ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਲਓ।

सच्चे पातशाह कड़ा प्रसाद जी की देग हाजर आप जी को प्रवान होवे प्रवान भी तू इन देख ले छकेंगे असी अज खुश बड़े स्याणे हो गए प्रवान इधर थोड़िया घर आलिया बैठिया होनी है घर बैठिया होनी है वो नितनी प्रशादा तैयार कर दी आलू मटर गोभी बना लेने साग नू तुड़क देन विच प्रशादे रख देन दही की कौली रख के पति देव नू कहन पति देव जी प्रवान कर लो पर हाथ न लायो मैं डांग चलू कि नहीं सर जूगा प्रवान प्रवान कराई दा जिहड़ा जिउंदा जागदा ना होवे इह साडा सतगुर जागता है दियो इह दसां पातशाह दी प्रगट सरूप है साहिब मेरा नीत नवा कह के देखो अपने बापू नूं भी छकीना प्रवान करना सरजूगा कम जे इहनूं जागत जोत मानदे हो तां प्रवान नाल ही चलना आप जी को भोग लगे इह टकसाल दा कम है मर्यादा दा कम है ये छड़ता कम कह दे तू प्रवान कर ले ते चकन नूं असियों बहुते छड़दे नहीं है एक होर कम चलाता कृपान नहीं फेर दे कृपान भेट नहीं कर दे कोल खड़े रहने अरदासी अरदास करूं प्रवान होवे जद अरदास मुक जूगी मत्था टेक देंगे फिर कृपान कसाउणगे विच देखो मर्यादा तय है जदों सिंह कभी आप जी को भोग लगे उदो महाराज जी कृपान भेट कर सिख कहते नहीं नहीं जद तू छकना उदो नहीं करनी जदो असी छकेंगे उदो करेंगे खुश है असी बहुते ए मर्यादा जे किसी नूं पुछो ना पिकाते हट के तुसी कहणगे जी अरदास विच बिरती टुट जांदी है लो वेख लो मैं एक नूं पुछया मैं कहा जिहड़े 24 घंटे डाहा पाई फिरदे ए तेरी बिरती रहण दऊगी इहनूं भी तार मैं कहा जे कृपान बिरती तोड़दी है कृपान बिरती जोड़दी है कि तोड़दी है जिहड़ा कहिंदा भी कृपान फेरन नाले मेरी बिरती टुटदी है तो गातरा क्यों पाई फिरदा फिर उहदी तां जुड़दी ओ नहीं होणी किते भी उह तां 24 घंटे कोल लई फिरदे नाले गुरमुखो बिरती बिरती तां जिन्हां दी जुड़ी भी है आरियां दे डंडे भी नहीं तोड़ सके बंद बंद कटते तां ना टुटी देगां दे वालियां च ना टुटी है ते कड़ाही च फेरन ते टुटदी है अज के खुश है एक महापुरुष ने साडे बहुत वड्डे वह जद कीर्तन करते ना उन्हां दे पिछे दो जने खड़ जाने सेवक चाहे गर्मी होवे सर्दी होवे चाहे पौ होवे माघ होवे वो दो जने पिछे खड़े पता की करते जिवें जद मुंडा अपना ब्याहण जांदा ते मथा

सन्मान को, सत्संगी सज्जन पवित्र आत्मा गुरमुख सज्जन जितने भी माई पाई साहेब गुरु ग्रंथ साहब पातशाही पवित्र कदमा अंदर अमृत वेले दिया हाजरियां भर रहे हो सोने दरबार प्यारे दरबार सतगुरु जी के पवित्र चरणों का आनंद ले रहे हो बहुत बख्शिश होवे बहुत गुरु कृपा करे ता अपनी सिर्फ सलाघा बख्शदा है सिर्फ सलाघा उन्होंने बख्शदा है जिन्हों ते गुरु का कर्म होवे जिन्हों ते गुरु की बख्शिश मेर अति रहमत होवे उन्होंने ये सत्संग दियां कड़ियां।

जेठ दा महीना तत्ता तुप तत्ती रेत तत्ती मुगल सरकार तत्ती पर ठंडे कौन हन शांति दे पुंज निमरता दे सागर गंभीरता दे सोमे गुरबाणी दे बोहित गुरमत दे स्कॉलर पंजवे गुरु नानक शहीदां दे सिरताज पंचम पातशाह श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज। किसे कवि ने ठीक ही किया है, इना अखा ने कई पतंगियां नू उंज ता लाटा ते सड़दियां देखिया है। मैं कई वेर चुप किते गुंचियां नू देगा विच भी कढ़दियां देखिया है। तत्ती रेत ते कई नमाजियां नू मैं कलमा यारदा पढ़दियां देखिया है। पर मैं की दसा अर्जन देव ताई किदा अग उते सड़दियां देखिया है। हजरत मियां मीर ईरान दे रहण वाला जो उस वक्त लाहौर विच ही रह रहा सी, जदों उस नू किसे ने जाके दसिया ओए फकरा जाके अपने यार दी हालत ता देख, ता इस सुन के साईं मियां मीर दौड़िया आया। आके की देखदा है कि गुरु अर्जन देव जी महाराज तत्ती तवी ते बैठे हुए हन। सारा शरीर छले छले होया पया है, पर मस्तक डलका मारिया है ते मुखों की कह रहे हन, तेरा किया मीठा लागे। ए सब कुछ देख के साई मियां मीर ने गुरु साहब नु सवाल कीता। मियां मीर ने पुछया सतगुरा नु, तवी तपदी वांग तंदूर दाता और तन भर दिता सारा शालिया ने जिवे वेल ते गुच्छे अंगूर दाता। कोमल कलियां तो कूड़ा रेशमा तो जिसम टलके होया मनूर दाता, और कल तख्त उत्ते ते अज तवी उत्ते एक ही खेल रचाए रब्बी नूर दाता। ते नाल ही हाथ जोड़ के बेंती कीती, महाराज मेरे कोलों तसीहे जरे नहीं जांदे, मेनू हुक्म दियो मैं अज ही लाहौर ते दिल्ली दी इट नाल इट खड़का देंगा। तां गुरु अर्जन देव जी महाराज ने बड़ी धीरता नाल पुछया, साई जी ए शक्तियां कित्थों प्राप्त कीतियां? तां जवाब मिलिया, जी हजूर कोलों। तां गुरु अर्जन देव जी महाराज ने फरमाया, इन्हां शक्तियां नूं असीं वी तां वरत सकदे सी, पर शक्ति वरतना परमात्मा दे विरुद्ध बगावत करना है। साढ़े दो निशाने सन, असी इस सृष्टि उपर दो नीहां रखनियां सन। अगों हस के सतगुरु कह लगे, तू फकरा रमज पछाणी नहीं, मैं तेरे दिल दी जान लई, तू मेरे दिल दी जानी नहीं। मैं रखनियां है सन दो नीहां, एक शहीदी दी एक हरमंदर दी, ओ तू रखती ए मैं रखूं, ए चाह है मेरे अंदर दी।

जुम बला वह तुम बोले है स्वामी कुदरत कवन हमारी साध संग नानक जस गायो जो प्रभु की अत प्यारी आए प्रभु शरणागति कृपा निध दयाल एक अखर हर मन वस्त एक अखर हर मन वस्त नानक होत निहार कहां बुद्ध प्रभु तुच्छ हमारी वर्ण सके महिमा जो तिहारी हम नसरत कर सिवत तुम्हारी हम नसरत कर सिवत तुम्हारी आप ले हो तुम कथा सुधारी जस करो वाहिगुरु दा प्यारे चितनु एकागर।

जैसो गुरु उपदेसया मैं तैसो कहया पुकार। कह नानक सुनरे मना कर कीर्तन होए उधार। कलयुग में कीर्तन प्रधाना गुरमुख जपिया लाए ध्याना। आप तरह सगले कुल तार हर दरगह पत सिंह जाइंदा।

0: सतगुरु युग युग अटल चवर तख्त मालक दसम पातशाह दी जग दी जोत शब्द अवतार संसार दे सांझे रहबर श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दी पवित्र गोद विच दूरों नेड़े चल के जिन्हें भी माई पाई सतसंगत हरी जस कीर्तन का लाभ उठाने के लिए गुरु दरबार भाग्य हो आओ अपने मन को एकाग्र करने की कोशिश करो अपनी सुरती अखां बाहर जाने तो रोको इधर उधर वेखन की कोशिश ना करो गुरु स्वरूप का ध्यान करो क्योंकि हरी जस कीर्तन सत्संग का पूरा लाभ ता ही प्राप्त हो सकता है जे साडे तन दे नाल मन भी इत्थे हाजिर होवे बोलो
1: सतनाम श्री वाहिगुरु
0: क्योंकि यह सब सुनाउणा मन नूं है तन नूं नहीं है तन तां इक जरिया है सो गुरु जी कहिंदे ने प्रभु की उस्तत करो संत मीत सावधान एकाग्र चीत जदों मन एकाग्र हो जाएगा गुरु शब्द दे नाल जुड़ेगा हरी जस कीर्तन च जुड़ेगा भुख दुख गर्मी सर्दी सब लगन तो हट जांदियां हन क्योंकि सेवक उही हुंदा है सतसंगी उही हुंदा है जिहड़ा भुख प्यास ते कंट्रोल करे गर्मी सर्दी सहार सकदा होवे दुख सुख की परवाह ना करे मान अपमान तो उपर उठे अते अपने मन नू अपने काबू विच रखे कंट्रोल करे बोलो
1: सतनाम श्री वाहिगुरु
0: सो ये साडे चंगे भागां दी निशानी है कलयुग दा बड़ा भयानक समा है ऐसे समय दे गुरु की शरण मिल जानी सतसंगत मिल जानी अच्छा करके निश्चय करके ये साडे चंगे भागां दी निशानी है सो कदम सफल कीते ने गुरु वल चल के नेत्र सफल कीते ने दर्शन करके सीस सफल कीता नमस्कार करके मत्था टेक के अपनी जबान भी सफल करया करो गज बज के तिना हिस्सों के बिच बोल के

जिज्ञासु कौन है, सत्संगी कौन है, जड़ा सवाल करता है जाके, हे गुरु हे महापुरशो मैनू दसो, मैं चौरासी विच फसया होया हाँ, मैं हनेरे विच फसया होया हाँ, मेरी जिंद दुखां विच फसी हुई है, मैनू दसो कोई रास्ता, ये सवाल करता है।

0: बिन हर नाम ना शांत होए कित विद मन
1: धीरे।
0: किस तरीके दे नाल मन धीरज विच आ जाए, किस तरीके दे नाल मन दी गति रुक जाए, किस तरीके दे नाल ए मन जिहड़ा दशा दे समझ भज्जिया फिरदा है, सुपने विच भी नहीं टिकदा, सुत्तां पिया भी टिकदा नहीं है, संगत विच भी नहीं टिकदा है, सब कुछ पा के भी टिकदा नहीं है। कबू जिगेड़ा ऊब चढ़त है, कबू जाए पायाले, लोभी जेरा थर न रहत है, चारे कुंटा
1: भाले।
0: वस्तु नहीं मिलती दुखी हुंदा है, जदों मिल जाती है फिर होर वध दुखी हुंदा है। बोलो
1: सतनाम श्री वाहिगुरु।
0: सो बिन हर नाम ना शांत होए कित विद मन धीरे। केड़े तरीके दे नाल मन धीरज विच आ जाए, किस तरीके दे नाल मन दी गति धीमी पै जाए, कुछ कंट्रोल विच हो जाए। बिन हर नाम ना शांत होए, गुरु जी कहिंदे हन बाणी दे विच, रब दे प्यारे दसदे हन भाई असीं विछड़े होए हाँ भाई, तू इस करके दुखी है, तू विछड़िया होया है, अपने मालक तो विछड़िया होया है। बोलो
1: सतनाम श्री वाहिगुरु।
0: अपने मालक तो विछड़िया होया है, तू अपने केंद्र तो टुटिया होया है, तू अपने धुरे तो अलग होया होया है। जिन्ना चिर तू नहीं मिलता उन्ना चिर तेनू दुनियावी शांति घड़ी दी घड़ी भावे मिल जाए, परंतु असल शांति नहीं मिलेगी। बोलो
1: सतनाम श्री वाहिगुरु।
0: क्योंकि शांति भी तीन तरह की होंगी है, एक शरीर तल की शांति, शरीरक तल की शांति, शरीरक भोग पदार्थ खाण पीन दे नाल जवान थोड़ा चिर बस पेट भर जूगा, जवान थोड़ा चिर बस कह देगी, परंतु थोड़े चिर बाद फिर वही भुख लग जाएगी। इसे तरह मन, मानस भोग पदार्थ

0: हे नाथ, मैनू कोई ऐसा तरीका दसो। नारद जी ने पता है की कहा? नारद जी ने कहना कीता, हे पार्थर, इसका इलाज मेरे को नहीं है। मैं तेनू एक तरीका दस दिंदा हां, रास्ता दस दिंदा हां। संसार ते गुरु नानक प्रगट हो गए, बोलो
1: सतनाम श्री वाहिगुरु।
0: हे पार्थरी, इधर उधर चोटा खाने की लोड़ नहीं है। दुनिया का मालक दुनिया ते आ गया है, बोलो
1: सतनाम श्री वाहिगुरु।
0: उत्थे तेनू शांति मिलू, तेनू सब कुछ मिलू, बोलो
1: सतनाम श्री वाहिगुरु।
0: हे नारद जी, फिर मैनू कोई रास्ता दस दो, कोई ढंग दस दो, उन्हां दा कोई चक्कर चिन्ह दस दो, स्वरूप दस दो, किथे पैदा होए ने ओह। श्री दशमेश मांगू, मैनू दसो, मैं उन्हां दा दर्शन किवें करांगा, मैं उन्हां नू किवें मिलांगा, मैं किवें उन्हां दी शरण विच जावां। कहना कीता, हे पार्थरी, तू इस तरह नहीं मिल सकता। तू उन्हां नू अराद याद कर, बेनतियां कर, अरदासा कर, तेनू आपे ही मिल जाणगे। आके बोलो
1: सतनाम श्री वाहिगुरु।
0: जिहड़ा उत्तम जिज्ञासु हुंदा है, उस नू गुरु खुद ही ढूंढ लैंदा है, बोलो
1: सतनाम श्री वाहिगुरु।
0: जिहड़ा अधिकारी नहीं हुंदा, उहनू दर ते आए नू भी कई बार मोड़ दिंदा है, बोलो
1: सतनाम श्री वाहिगुरु।
0: अण अधिकारी नू तू याद कर, बेनतियां कर, सो वक्त आया, समा आया। ओही पार्थर और बहुत सारे जोगी गुरु नानक नाल चर्चा को चर्चा करते हैं, सवाल जवाब करते हैं, परंतु पार्थरी सवाल जवाब नहीं करता है, बोलो
1: श्री वाहिगुरु।
0: दुनिया की आदत है, सलाम जवाब दो बैं करे, मुंडो कोथा जाए, ना ही मत्था टेकदा है, ना ही शंके करता है, ना ही सवाल जवाब करता है, दोवें ही काम करता है, बोलो
1: सतनाम श्री वाहिगुरु।
0: ना ही सेवक, ना ही शंका। सो सत्संगत पार्थरी ने सवाल जवाब नहीं किया, कुछ नहीं पुछया। बाकी जोगी परीक्षा लेंदे ने अपने होमें दे विच आके, कई तरह दियां रिद्धियां सिद्धियां विखाउंदे ने गुरु नानक नूं, बोलो
1: सतनाम श्री वाहिगुरु।
0: उन्हां नूं प्रभावित करन दी कोशिश करदे ने, गुरु नानक साडे जोग दे विच आ जाए, किन्ना जोग फैल जाएगा, साडा मत फैल जाएगा। पार्थरी ने सवाल जवाब नहीं किया, क्यों? क्योंकि पार्थरी नूं इशारा हो चुका सी, बोलो
1: सतनाम श्री वाहिगुरु।
0: पहला जोगी सी पार्थरी जिहड़ा गुरु नानक दी शरण विच पिया, बोलो
1: सतनाम श्री वाहिगुरु।
0: गुरु अंगद देव महाराज भाई लैणे दे रूप दे विच देवी दे चाले जांदे हन, संग लैके जांदे हन। चोजी प्रीतम, रस्ते विच की सुनिया गुरु नानक दी महिमा, क्योंकि ये दर ऐसा है भाई

वंश मेरा खानदान वधे और दुनिया दे विच ए देखदे आ कि जिदे घर धी पुत्र ना होवे रिश्तेदार भी उन्हां नूं ताने ते मेणे मारदे ने।

देव जी महाराज हुण इह तां गुरु नानक दी मेहर है कि गुरु अर्जन देव जी महाराज गुरु नानक दा रूप बन गए पर पृथ्वी चंद जिन्हां दा सुभा माया वाला ईरखा वाला दुबदा वाला सी और महादेव उन्हां नूं किसे चीज दे नाल कोई मतलब नहीं सी। वड्डा भरा पृथ्वी चंद हर वेले गुरु अर्जन देव जी महाराज दे नाल ईरखा करया करदा सी। एक दिन दा जिक्र है गुरु अर्जन देव जी महाराज दे तर्मस पत्नी माता गंगा जी जिन्ना ने वेड़े दे विच कीमती कपड़े कीमती समान रखे है तो पुलवान वास्ते कपड़िया नूं पृथ्वी चंद जी दी घरवाली करम कौर उसने जद छत ते चढ़ के माता गंगा जी दे घर वल देखिया रेशमी कपड़े गहने कीमती समान ते सड़ पल के कोले हो गई। करम कौर ए सारा कुछ देख के बर्दाश्त ना कर सकी मंजी ते आके लम्मे पै गई। पृथ्वी चंद बाहरों आए घरवाली नूं कहन लगे करम कौरे उदास क्यों है। करम कौर कहन लगी पृथ्वी चंद नूं अगर तुसी अपने पिता दा कहना मन्या हुंदा गुरु रामदास जी दा ते तुसी गुरु बन

और बाबा बुड्ढा जी, आज आप अपनी जगह तो उठ के अगा हुए और पज के माता गंगा जी दे सिर तो प्रशादे अते लस्सी दी चाटी पकड़ ली और नाल कहन लगे, मां अज बड़ी देर कर दी थी, आई ते भुख भी बड़ी लगी, कैसा रिश्ता है जिदे कोल पुत्र मंग

जिस तुम आप करा है। ते हुन तुसी दावा करके कह सकते हो, जदों करानो जाओगे ए दावा करके कह सकते हो कि किसी ने बैकुंठ नहीं देखे।

माता गंगा जी अपने महलों में चले गए ते श्री गुरु अर्जन देव पातशाह ओही पुराना कंबल अपने पावन शरीर ते ओढ़िया होया है ते चोड़ियां विच आके खलो गए। हजूर कहंदे गुरसिखो जाओ तुसी गुरु रामदास साहब दा दर्शन करो ते तुहाडे जोड़ियां दी राखी।

सत्संग तुम्हें कह दे थोड़ी देर होर रुक जा। मैनू इस रस तो ना तोड़न, गुरु नानक दा जोड़ा लब जाए ते मैं अपने आप ही हरिमंदर साहब पहुंच जावां। इतनी निमकता जे इतनी निम्रता सी ते तवियां ते बह के भी क्रोध नहीं आया, जे इतनी निम्रता सी ताइयों ते पट्टा ने कह दिता के धरण गगन नव खंड में ज्योत स्वरूपी रहो भर, भन मथुरा कछ भेद नहीं बुर अर्जन।

और सत्कार योग साध संगत, अठवें गुरु गुरु हर कृष्ण साहब जी महाराज, जिन्हां बाला प्रीतम करके सिख संगत याद कर दिया हन, जिन्हां दी याद विच कई जगह गुरुद्वारे बने हन, दिल्ली दे विच गुरुद्वारा बंगला साहब, जिस जगह हजारां संगतां रोजाना जाके अपना सीस झुकांदियां हन और नाल मथा टेकदियां होईयां, उहनां दे मूंह तों अपने आप ही निकलदा है श्री हर कृष्ण ध्याईए, जिस डिठे सब दुख जाए। तो आओ गुरु हर कृष्ण साहब जी महाराज दा जीवन आपां सारे रल के विचार करिए। जीवन तो पहला भाई गुरदास जी की उचारी हुई पौड़ी, हर कृष्ण पयो अष्टम बलवीरा, आओ आप सारे रल के इस शब्द की विचार करिए।

अष्टम बलवीरा। अष्टम क्या है? आठवें गुरु बलवीरा, बल वाले। जिन पहुंच देहली तजियो शरीरा। भाई गुरुदास जी कह रहे हैं, हर कृष्ण पायो, गुरु हर कृष्ण साहब आठवें गुरु बड़े बल वाले सन। जिन पहुंच देहली तजियो शरीरा, जिन्हां ने दिल्ली पहुंच के अपना शरीर त्यागया। बाल रूप तरियो स्वांग रचाए, बाल रूप विच जिन्हां ने कई तरह दे कौतक करके अते दुखियां दे दुख दूर करके दुखियां नु सुख दिता। बाल रूप तरियो स्वांग रचाए, तब सहजे तन को छोड़ सिधाए। ए गुरु दा कौतक है कि जिन्हां ने छोटी उम्र विच ही दुखियां दे दुख दूर करके अपना शरीर त्यागया। आओ गुरु हर कृष्ण साहब जी महाराज दे जीवन बारे

मेरी चिंता मिट गई है और ना मैनू डर आउंदा है ते ना मेरे अंदर कोई चिंता आउंदी इसलिए कि तू मेरा सारिया थावां ते राखी करना सारिया थावां ते तू मेरा राखा है जे तू मेरे नाल है ते मैनू डर किसदा मैनू डर किसदा जे तू मेरे नाल है तो मैनू अग की करूगी जे तू मेरे नाल है तो मैनू कोई विपता संसार की सता नहीं सकती और मेरा कोई नुकसान और डरा धमका नहीं सकती मैनू क्योंकि तू मेरा राखा है सारिया थावां ते इसे लिए मालिक सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने फरमाया हजूर ने बड़े माण विच बड़े जोर विच किया कि एडा मेरा वाहिगुरु वड्डा है कि भावें मैं अग विच भावें मैं देग विच भावें तत्तियां रेतां सीस ते पईआं पर मैनू तत्ती वाह भी नहीं लगी ये कौन कहेगा खसम वाला मालक वाला गुरु वाला जिहड़ा है ही बेगुरा वो कहेगा कि जिसनू कदी पिता दी गोद विच बैठन दा सुभाग समा ही नहीं प्राप्त होया वो मान की कर सकदा किसे ते जिसने कदी पिता कोलों अमृत ही नहीं पीता वो कह सकदा है कि मेरा बापू मेरा पिता मेरे वास्ते आ करेगा नहीं नहीं कह सकेगा उनू अपनी कमजोरी दा पता है लेकिन सतगुरु सच्चा पातशाह बड़े तान नाल बड़े मान नाल हजूर फरमांदे ने ताती वाओ न लग गई पार ब्रह्म सरनाई चौगिर्द हमारे रामकार दुख लगे न पाई सतगुर पूरा पेटिया जिन बणत बनाई राम नाम औखद दिया एका लिव लाई राख लिए तिन रखन हार सब ब्याध मिटाई कहो नानक कृपा पई प्रभ पए उस मान विच आके तान विच आके असी कौन हां सारे बच्चे सारा परिवार सतगुरु जी दा बच्चे और बच्चियां परिवार मालिक सतगुरु सतगुरु परिवार दा मालिक है साडा तो असां ए तो कदी नहीं कहना कि असी सतगुरु दा परिवार हां पर आपां पढ़ लईए जरूर सारी संगत पढ़ियो गुरु अर्जन देव अकाल पुरख की गोद विच ते सारी संगत गुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह दे चरणा उते फोटो ते इवें आएगी ना पता ते इवें ही लगेगा ना अकाल पुरख की गोद विच अकाल पुरख दे चरणा उते साहिब गुरु अर्जन देव सच्चा पातशाह और उन्हां दे चरणा उते आपां सारे उस मान विच आके सतगुर सच्चे पातशाह दी हजूरी विच जिवें उन्होंने माण किया आपां भी माण करिए ने सारे तो बोलो सारे बीबियां उच्ची आवाज विच और बड़े कंट्रोल विच गलबात छोटी छोटी साडे को नहीं आनी चाहिए क्योंकि सत्संग है सचखंड है वैकुंठ है इसी महिमा का पारावार नहीं जे असीं नहीं सोचांगे तो बेअदब होवांगे सारे पढ़ियो

हर जी मेरी सार करे हम हर के बालक। मुंह मंगा सोई देवदा हर पिता सुखदायक। अवगुण को न चितारदा

राग गौड़ी माला विच ऋषभ गंधार धैवत सुर कोमल अते बाकी सुर शुद्ध लगते हैं। इस दी जाति संपूर्ण वादी धैवत संवादी ऋषभ अते समा राग दा पहला पैर है। इस राग विच पाया लाल रतन मन पाया शब्द दा गायन कर रहे हैं प्रोफेसर करतार सिंह।

आखन लगे दिल फरोश अज कुछ कीमत घट की है कुछ मुल घटाया या कल वाला ही है। आखन लगा जी क्योंकि जिनस भी हो ही है पदार्थ भी हो ही है वस्तु भी हो ही है इसलिए मुल भी रखा है लेकिन सतगुरु कहने लगे लेकिन का क्या मतलब कुछ ये रू रैत है। आखन लगा हां जी एनी है जेडी ओदी अवस्था है जेडी ओदी हालत है उसने आप आखी कहन लगा महबूबा दे कूचे।

0: विनाश
1: नानक वड्डा आखिए आपे जाने आप
0: सलाही सलाह एति सूतना पाइया
1: नदिया अते वा पवे सुंदर जानिए।

0: तेरा परिसो कहियन केते गावन हारे।
1: गावे तू नो पौन पानी बसंतर गावे राजा धरन द्वारे।
0: गावे चित्त गुप्त लिख जाना लिख लिख।

0: प्रचंड
1: खंड की वाणी रूप
0: तिथे करत करिए बहुत अनूप
1: गल्ला कथिया ना जाए
0: जी को कह पीछे पछताए।

0: रक्षा निज कर दे करिए,
1: सबन को आशंगरिए,
0: पूर्ण होई हमारी आशा,
1: तौर पयन की रहे प्यासा,
0: तुम ही शाड कोई अवर न त्याऊं,
1: जो वर चाहो सो तुम ते पाऊं,
0: सेवक सिख हमारे तारी है,
1: चुन चुन सतर हमारे

0: मोय राखनहारे
1: साहिब संत सहाई प्यारे
0: दीन बंद दुष्टन के हंता
1: तुम हो पुरी चतुर्दश कंता
0: काल पाए ब्रह्मा बपतरा
1: काल पाए शिव जू अवतरा
0: काल पाए कर बिस्न प्रकाशा
1: सकल काल का किया तमाशा
0: जवन काल जोगी शिव कियो
1: वेद राज ब्रह्मा ज्योतियो
0: जवन काल सब लोक सवारा
1: नमस्कार है ताए हमारा
0: जवन काल सब जगत बनायो
1: देव दैत यशन उपजायो
0: आद अंत एके अवतारा
1: सोई गुरु समझियो हमारा
0: नमस्कार तिस ही को हमारी
1: सकल पर जिन आप सवारी
0: शिवगन को शिवगन सुख दियो
1: संतन को पल मोबद कियो
0: कट कट की अंतर की जानत
1: पले बुरे की पीर पशांत
0: टीते कुंचर अस्थूला
1: सब पर कृपा दृष्ट कर फूला
0: संतन दुख पाए ते दुखी
1: सुख पाए साधन के सुखी
0: एक एक की पीर पछाने
1: कट कट के पट पट की जाने
0: जब उत्कर्ख करा कर तारा
1: परजा तर तब दे अपारा
0: जब आकर्ख करत हो कब हूँ
1: तुम मैं मिलत दे तर सब हूँ
0: जेते बदन सृष्ट सब तारे
1: आप अपनी भूज उचारे
0: तुम सब ही ते रहत निरालम
1: जानत भेद भेद आरालम
0: निरंकार निरिबकार निर्लंब
1: आद अनिल आनंद असंभ
0: ताका मूड उचारत भेदा
1: जाको बेब न पावत वेदा
0: ताको कृपाहन अनुमानत
1: महामूड कुछ वेद न जानत
0: महादेव को कहत सदा शिव
1: निरंकार का चिंत नहीं पैब
0: आप अपनी बुध है जेती
1: बातन पिन पिन तू है तेती
0: तुमरा लखन जाय पसारा
1: कैपिद सजा प्रथम संसारा
0: एक रूप अनूप स्वरूपा
1: रंग पजोरव के ही पुपा
0: अंड जिर से तजकीनी
1: उत्भुज खान बहु रच दीनी
0: कहो कुल राजा है बैठा
1: कहो सिमट पजो शंकर अकेठा
0: खड़ कीत में शरण तिहारी
1: काय अचंभव आद जगाद स्वरूप सजंभव
0: अब रक्षा मेरी तुम करो
1: सिखा वार सिख संगरो
0: दुष्ट जिथे उठवत उत्पाता
1: सकमलेश करो रनकाता
0: जी असी जुजब थर तब सरनी परे
1: किनके दुष्ट दूत है मरे
0: पुरख जवन पग परे तिहारे
1: तिनके तुम संकट सब तारे
0: जो कल को एक बार त्याए हैं
1: ताके काल निट नहीं आए हैं
0: अच्छा होए ताहे सब काला
1: दुष्ट अरिष्टरे तत्काला
0: कृपा दृष्टन जाय नहरियो
1: ताके तब तनक मोहर हो
0: रिद्ध सिद्ध कर्मो सब होई
1: दुष्ट शय सब सके न कोई
0: एक बार जिन तुम्बे संभारा
1: काल फांसते ताई उबारा
0: जिर्नर नाम त्यारो कहा
1: दर्द दुष्ट दोग ते रहा
0: खड़क कीत में शरण तिहारी
1: आप हाथ दे लियो अवारी
0: सर्व ठौर में हो सहाई
1: दुष्ट दोग ते लियो बचाई
0: कृपा करी हम पर जग माता
1: ग्रंथ करा पूर्ण सुबराता
0: किल्बिक सकल देह को हरता
1: दुष्ट दुखियान को शय करता
0: श्री असीजु तप पै त्याला
1: पूर्ण करा ग्रंथ तत्काला
0: मन बांछित फल पावे सोई
1: दुख न किसे व्याप्त
0: अड़िल सुने गुंग जो जाए सुर

0: पूरी न होए चित की इच्छा,
1: तब चरण मन रहे हमारा,
0: अपना जान करो प्रतिपारा,
1: हमरे दुष्ट सबे तुम काबो,
0: आप हाथ दे मोहे बचावो,
1: सुखी वसे मोरो परवारा,
0: सेवक सिख सबे करतारा,
1: मोर शानिज कर दे करिए,
0: सब रिन को आज संगरिए,
1: पूर्ण होए हमारी आशा,
0: तोर भजन की रहे प्यासा,
1: तुम्हें शाड कोई अवर ना त्याऊं,
0: जो बर चाहो सो तुम ते पाऊं,
1: सेवक सिख हमारे तारिये,
0: चुन चुन सत्र हमारे मारिये,
1: आप हाथ दे मुझे अवरिये,
0: मरण काल का त्रास निवरिये,
1: हूं जो सदा हमारे पछा,
0: श्री अस्जुजू करियो रक्षा,
1: राख लियो मोरा खनहारे,
0: साहिब संत सहाय प्यारे,
1: दीन बंद दुष्टन के हंता,
0: तुम हो पुरी चतुर्दश कंता,
1: काल पाए ब्रह्मा बतरा,
0: काल पाए शिव जू अवतरा,
1: काल पाए कर विष्णु पर कासा,
0: सकल काल का किया तमाशा,
1: जवन काल जोगी सब कियो,
0: वेद राज ब्रह्मा जू थियो,
1: जवन काल सब लोक सवारा,
0: नमस्कार है ताहे हमारा,
1: जवन काल सब जगत बनायो,
0: देवदात जच्छन उपजायो,
1: आद अंत एके अवतारा,
0: सोई गुरु समझियो हमारा,
1: नमस्कार तिसी को हमारी,
0: सकल प्रजा जिन आप सवारी,
1: शिवकन को शिव गुण सुख दियो,
0: सतनन को पल मोबद कियो,
1: काट काट के अंतर की जानत,
0: पले पुरे की पीर पछानत,
1: चीटी ते कुंचर अस्थूला,
0: सप कृपा दृष्ट कर फूला,
1: संतन दुख पाए ते दुखी,
0: सुख पाए साधन के सुखी,
1: एक एक की पीर पछाने,
0: काट काट के पट पट की जाने,
1: जब उदक रख करा करतारा,
0: प्रजा तरत दब दे अपारा,
1: जब आकर रख कर तू कबू,
0: तुम में मिलत दे तर सबू,
1: जेते बंदन स्थित सब तारे,
0: आप अपनी बूझ उचारे,
1: तुम सविते रहत निरालम,
0: जानत भेद भेद आरालम,
1: निरंकार निर्विकार निर्लंब,
0: आद अनिल अनाद असंभ,
1: ताका मूल उचारत पेदा,
0: जाको पेव न पावत बेदा,
1: ताको कार पान उन्मानत,
0: महामूड कछ भेद न जानत,
1: महादेव को कैत सदा शिव,
0: निरंकार कचीनत न पेव,
1: आप अपनी बुद्ध है जेती,
0: वर्णित पिन पिन तो है तेती,
1: तुमरा लखन जाए पसारा,
0: कैबित सजा प्रथम संसारा,
1: एके रूप अनूप स्वरूपा,
0: रंग पे उराव कही पूपा,
1: अंडर जेरा से तजकीनी,
0: उत्पज खान बहुरच दीनी,
1: कौ फूल राजा है बैठा,
0: कौ सिमट पे शंकर इकट्ठा,
1: सागरी शिष्ट दिखाए अचंभव,
0: आद जुगाद स्वरूप असुअंभव,
1: अब रक्षा मेरी तुम करो,
0: सिख उबार सिख संगरो,
1: दुष्ट जेते उठ बात उत्पाता,
0: सकल मलेश करो रण काता,
1: ये अस्तुज तब सर नहीं परे,
0: दिन के दुष्ट दुख्त है मरे,
1: पुरख जवन पग परे तिहारे,
0: दिन के तुम संकट सब टारे,
1: जो कल को एक बार त्याय है,
0: ताके काल निक नहीं आए है,
1: रक्षा होए ताए सब काला,
0: दुष्ट अरिष्ट रे तत्काला,
1: कृपा दृष्टन जाए निहरियो,
0: ताके ताप तनिक मोहरियो,
1: रिद्ध सिद्ध कर्मो सब होई,
0: दुष्ट शास वह सके न कोई,
1: एक बार जिन तुम्हें संभारा,
0: काल फास्ते ताहे उबारा,
1: जिनर नाम त्यारो कहा,
0: दार दुष्ट दोखते रहा,
1: खड़ग के तमे शरण तिहारी,
0: आप हाथ दे लियो उबारी,
1: सर्व ठोर मोहो सहाय,
0: दुष्ट दोखते लियो बचाए,
1: कृपा करी हम पर जग माता,
0: ग्रंथ करा पूरन सब राता,
1: किलविक सकल दे को हारता,
0: दुष्ट देखी इनको शय करता,
1: श्री अस्तु जब पे दयाला,
0: पूरन करा ग्रंथ तत्काला,
1: मान बसंत फल पावे सोई,
0: दुख नत से व्यापत

0: सिमरन कीर्ति स्नानी
1: प्रभ के सिमरन दर गे मानी
0: प्रभ के सिमरन होए सो फला
1: प्रभ के सिमरन सफल फला
0: जे सिमरे जिन आप सिमराए
1: नानक ताके लागो पाए
0: प्रभ का सिमरन सबते ऊंचा
1: प्रभ के सिमरन

0: समाए
1: प्रभु जी बसे साध की रसना
0: नानक जन का दासन दसना
1: प्रभु को सिमरे से तनवंते
0: प्रभु को सिमरे से पतवंते
1: प्रभु को सिमरे से जन परवान
0: प्रभु को सिमरे से पुर प्रदान।

0: को सिमरे से परोपकारी,
1: प्रभ को सिमरे तिन सद बलिहारी,
0: प्रभ को सिमरे से मुख सुहावे,
1: प्रभ को सिमरे तिन सुख बिहावे,
0: प्रभ को सिमरे तिन आत्म जीता,
1: प्रभ को सिमरे तिन निर्मल रीता,
0: प्रभ को सिमरे तिन

0: जे मात पिता सुत मीत न पाई,
1: मनोहर नाम तेरे संग सहाय।
0: जे महापयान दूत जम दले,
1: केवल नाम संग तेरे चले।
0: जे मुश्किल होवे अत पारी,
1: हर नाम बिन कहे उदारी।
0: अनेक पुण्य चरण करत नहीं।

0: जपिए एक बार।
1: नौ खंड पृथ्वी फिरे चिर जीवे,
0: महा उदास पीसर थीवे।
1: अगन में होमत प्राण,
0: कनिक असभागर कुम दान।
1: न्योली कर्म करे बहु आसन,
0: जैन मार्ग संजम अत साधन।
1: निमख निमख कर शरीर कटावे,
0: तौ भी हमें मैल न जावे।
1: हर के नाम समसर कुछ नाए,
0: नाना गुरमुख नाम जपत गित पाहे।
1: मन कामना तीर्थ दे छूटे,
0: गर्भ मान न मनते लूटे।
1: सोच करे दिन स और रात,
0: मन की मैल न तनते जात।
1: इस देही को बहुत साधना करे,
0: मन ते कभू न बिख्या डरे।
1: जल तो वे बहुत दे अनीत,
0: शुद्ध कहो काय कब ची पीत।
1: मन में हर नाम की महिमा ऊंच,
0: नानक नाम उदरे पतित बहुमूच।
1: बहुत स्यान जम का पौ व्यापे,
0: अनेक जतन कर त्रिसना त्रापे।
1: पेख अनेक अगन नहीं बुझे,
0: ओट पात्र ज्ञानी सीजे।
1: छूटत नाही उब प्याल,
0: मो व्यापे माया जाल।
1: अवर करतूत सगली जम डाने,
0: गोविंद भजन बिन तिल नहीं माने।
1: हर का नाम जप दुख जाए,
0: नानक बोले सहज सुभाए।
1: चार पदार्थ जे को मांगे,
0: साध जना की सेवा लागे।
1: जे को अपना दुख मिटावे,
0: हर हर नाम रिते सद गावे।
1: जे को अपनी सोबा लोरे,
0: साथ संगे हमें छोरे।
1: जे को जन्म मरण ते डरे,
0: साध जना की सरली परे।
1: जिस जन क्यों प्रभ दर्श प्यासा,
0: नानक ताके बल बल जासा।
1: सगल पुरख में पुरख प्रदान,
0: साथ संग जाका मिटे अभिमान।
1: आपस क्यों जो जाने नीचा,
0: सो गनिये सब ते ऊंचा।
1: जाका मन होए सगल किरीना,
0: हर हर नाम तेन कट कट चीना।
1: मन अपने ते बुरा मिटाना,
0: पेखे सगल श्रेष्ठ साजना।
1: सुख दुख जन साम दृष्टेता,
0: नानक पाप पुन नहीं लेपा।
1: निर्तन क्यों तन तेरो नाओ,
0: निथावे को नाओ तेरा थाओ।
1: निमाने क्यों प्रव तेरो मान,
0: सगल कटाको देवो दान।
1: कर्ण करावन हर स्वामी,
0: सगल कटाके अंतर जामी।
1: अपनी गतमित जानो आपे,
0: आपन संग आप प्रभराते।
1: तुमरी उस्तत तुम ते होए,
0: नानक अवर न जानस तोए।
1: सर्व धर्म में श्रेष्ठ धर्म,
0: हर को नाम जप निर्मल कर्म।
1: सगल क्रिया में उत्तम क्रिया,
0: साथ संग दुर्मत मल हिरिया।
1: सगल उदम में उदम पला,
0: हर का नाम जपो जी सदा।
1: सगल वाणी में अमृत वाणी,
0: हर को जसन रसन बखानी।

0: चेत प्राणी
1: कवन मूलते कवन दिष्टानी
0: किंतु साज सवार सिगारिया
1: गर्भगन में जिने उबारिया
0: मारु वस्ता तुझे प्यारे दूत
1: पर जोवन भोजन सुख सुद
0: यद पिया ऊपर साख सहन
1: मुख पिया फिर बैठ क्यों देन
0: हे निर्गुण गुण कुछ न बुझे
1: बाक्ष लियो तो नानक सीजे
0: प्रसाद आरो ऊपर सुख बसे
1: सूत प्रात मीत बिनत संग हसे
0: प्रसाद पीवे शीतल जला
1: सुखदाई पावन पवक मूला
0: प्रसाद भोगे सब रसना
1: सगल समग्री संग सत बसे

0: बाहर उसका विश्वास न होवे। प्रभु की आज्ञा माने माथे
1: दे चौगन करे निहाल
0: दानिक साहिब सदा दयाल
1: मनिक पाप माया के
0: सर पर होवत।

0: नानक उन चैन पराता।
1: करो बेनती पार ब्रह्म सब जाने,
0: आपना किया आपे माने,
1: आपे आप करत नबेरा,
0: किसे दूर जनावत किसे

0: जे प्रसाद क्षति अमृत खाए
1: निष्ठा कर के रख मन माए
0: जे प्रसाद सुगंध तन लावे
1: जिसको सिमरत परम गत पावे
0: जे प्रसाद बसे सुख मंदर
1: तिसे त्याए सदा मन अंदर
0: जे प्रसाद ग्रह संग सुख बसना
1: आठ पै सिमरो तिस रसना
0: जे प्रसाद रंग रस भोग
1: नान सदा त्याए त्यावन जोग
0: जे प्रसाद पाठ पटंबर हंडावे
1: तिसे त्या कतावन लुवावे
0: जे प्रसाद सुख सेज सोई जय
1: मन आठ पैता का जस गावीए
0: जी प्रसाद तुझ सब को बखा माने
1: मुखता को जस रसन बखाने
0: जी

0: प्रसादि रे ओला रहत
1: मान सुख पावे हर हर जस कहत
0: जी प्रसाद तेरे सगल शिरद ठाके
1: मान शरणी पाठक प्रवताके
0: जी प्रसाद तुझको ना पहुचे
1: मन सास सास सिमरो प्रावि हुचे
0: जी प्रसाद पाई दुर्लभ दे
1: नानक ताकी भक्त करे
0: जी प्रसाद आपूखन पहरी जय
1: मानती सिमरत को आलस कीजे
0: जी प्रसाद असव अस्त असवारी
1: मानती प्रभु को कबु ना वसारी
0: जी प्रसाद मिलख तना
1: राख परोए प्रभ अपने मना
0: जिन तेरी मन बनत बनाई
1: उठत बैठ सा तिसे त्याई
0: तिसे त्याई जो एक अलख है
1: इहां उहां तेरी रखे
0: जी प्रसाद करे पुन बहुत

0: मन आठ पैर कर तिसका ध्यान।
1: जी प्रसाद तू आचार व्यवहारी
0: इस प्रभु को सास सस्ता।
1: जी प्रसाद तेरा सुंदर रूप
0: सो प्रभु सिमरो सदा अनूप।
1: जी प्रसाद तेरी निकी जात
0: सो प्रभु सिमर सदा दिन रात।
1: जी प्रसाद तेरी पत रह
0: गुर प्रसाद नानक जस कहे।
1: जी प्रसाद सुने कर नाद
0: जय प्रसाद पेखे विश्वाद।
1: जी प्रसाद बोले अमृत रसना
0: जय प्रसाद सुख सहज वसना।
1: जी प्रसाद हस्त कर चल है
0: जय प्रसाद संपूर्ण फले।
1: जी प्रसाद परम गत पाव है
0: जय प्रसाद सुख सहज सुहावे।
1: ऐसा प्रभु त्याग अवर कत लागो
0: गुर प्रसाद नानक मन जागो।
1: जी प्रसाद तू प्रगट संसार
0: इस प्रभु को मूल न मनो विसार।
1: जी प्रसाद तेरा प्रताप
0: रे मन मूर तू ता क्यों जाप।
1: जी प्रसाद तेरे कारज पूरे
0: इसे जान मन सदा हजूरे।
1: जी प्रसाद तू पावे साच
0: रे मन मेरे तू ता स्यों राच।
1: जी प्रसाद सब की गत होए
0: नानक जाप जपे जप सोए।
1: आप जपाए जपे सो नाओ
0: आप गवाए सो हर गुण गाओ।
1: प्रभ कृपा ते होए प्रगास
0: प्रभु दया ते कमल व्यास।
1: प्रभ सो प्रसन्न बसे मन सोए
0: प्रभ दया ते मत उत्तम होए।

0: अचरज कथास्तपदी
1: साधक संग मुख उज्जल होत
0: सत्संग मल सगली खोत
1: साधक संग मिटे अभिमान
0: साधक संग प्रगटे सो ज्ञान
1: साधक संग बुझे प्रभ नेरा
0: सत्संग संग होत नबेरा
1: साधक संग पाए नाम रतन
0: साधक संग एक ऊपर जतन
1: साधक महिमा वरने कौन प्राणी
0: नानक साधक शोभा प्रभ माहे समानी
1: साधक संग अगोचर मिले
0: साधक संग सदा पर फुले
1: साधक संग अवे बस पंचा
0: साध संग अमृत रस पंचा
1: साध संग हो सब की रेन
0: साधक संग मनोहर बहन
1: साधक संग न कथु तावे
0: साध संग अस्तित्व मन पावे
1: साधक संग माया ते पीना
0: साध संग नानक प्रभ सो प्रसन्न
1: साध संग दुश्मन सब मीत
0: साधु के संग महापनीत
1: साध संग किस नाही वैर
0: साधक संग न बीगा पैर
1: साधक संग नाही को मंदा
0: साध संग जाने परमानंदा
1: साध के संग नहीं हो ताप
0: साध के संग तज सब आप
1: आपे जाने साध बढ़ाई
0: नानक साध प्रभु बने आई
1: साध संग बस्त अगोचर लहे
0: साध के संग ना कभू तावे संग सदा सुख पावे साध संग बस्त अगोचर लहे
1: साधु के संग साध के संग बसे थान ऊंचे
0: साधु के संग महल पहुँचे
1: साधक संग दिले सब धर्म
0: साध के संग केवल पार ब्रह्म
1: साध के संग पाए नाम निदान
0: नानक साधु के कुर्बान
1: साध के संग सब कुल उदारे
0: साध संग साजन मीत कुटुंब निस्तारे
1: साधु के संग सो तन पावे
0: जिस तन ते सब को बरसावे
1: साध संग धर्म राय करे सेवा
0: साध के संग सो बासुर देवा
1: साधु के संग पाप पलायन
0: साध संग अमृत गुण गायन
1: साध के संग सर्व थान गाम
0: नानक साध के संग सफल जन्म
1: साध के संग नहीं कुछ काल
0: दर्शन पेटत होत निहाल
1: साध के संग कलुकत हरे
0: साध के संग नरक पर हरे
1: साध के संग इहां उहां सहेला
0: साध संग बिछरित हर मेला
1: जो इच्छे सोई फल पावे
0: साध के संग न बिरथा जावे
1: पार ब्रह्म साध रिदवसे
0: नानक उदरे साध सुन रसे
1: साध के संग सुनो हर नाओ
0: साध संग हर के गुण गाओ
1: साध के संग ना मन ते बिसरे
0: साध संग सर पर निस्तरे
1: साध के संग लगे प्राण मीठा
0: साधु के संग कट कट डीठा
1: साध संग पे आज्ञाकारी
0: साध संगत पे ही हमारी
1: साध के संग मिटे सब रोग
0: नानक साध पेटे संजोग
1: साध की महिमा वेद न जाने
0: जेता सुने ते तब ख्याने
1: साध की उपमा ते गुण ते दूर
0: साध की उपमा रही पर पूर
1: साध की शोभा का ना ही अंत
0: साध की शोभा सदा बेअंत
1: साध की शोभा ऊंचते ऊंची
0: साध की शोभा मूच

0: राष्ट्रपति
1: ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्लेप
0: जैसे जल में कमल लेप
1: ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्दोख
0: जैसे सूर्य सर्व को सोख
1: ब्रह्म ज्ञानी कै दृष्ट समान
0: जैसे राज रंग को लागे तुल पवान
1: ब्रह्म ज्ञानी कै धीरज एक
0: को खोदे को चंदन लेप
1: ब्रह्म ज्ञानी कै एह गनाओ
0: नानक जो पाव का सहज सुभाओ
1: ब्रह्म ज्ञानी निर्मल ते निर्मला
0: जैसे मैल न लागे जला
1: ब्रह्म ज्ञानी कै मन होए परगास
0: जैसे तर ऊपर आकाश
1: ब्रह्म ज्ञानी कै मित्र सत समान
0: ब्रह्म ज्ञानी के नहीं अभिमान
1: ब्रह्म ज्ञानी ऊंच ते ऊंचा
0: मन सब ने है सब ते नीचा
1: ब्रह्म ज्ञानी से जन पए
0: नानक जिन प्रभ आप करे
1: ब्रह्म ज्ञानी सगल की रीना
0: आत्म रस ब्रह्म ज्ञानी चीना
1: ब्रह्म ज्ञानी की सब ऊपर मया
0: ब्रह्म ज्ञानी ते कछ बुरा न पया
1: ब्रह्म ज्ञानी सदा समदर्शी
0: ब्रह्म ज्ञानी की दृष्ट अमृत बरसी
1: ब्रह्म ज्ञानी बंधन ते मुक्ता
0: ब्रह्म ज्ञानी की निर्मल जुगता
1: ब्रह्म ज्ञानी का भोजन ज्ञान
0: नानक ब्रह्म ज्ञानी का ब्रह्म ध्यान
1: ब्रह्म ज्ञानी एक ऊपर आस
0: ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश
1: ब्रह्म ज्ञानी कै गरीबी समाहा
0: ब्रह्म ज्ञानी पर उपकार उमाहा
1: ब्रह्म ज्ञानी कै नाही तंदा
0: ब्रह्म ज्ञानी ले तावत बंदा
1: ब्रह्म ज्ञानी कै होए सुफला
0: ब्रह्म ज्ञानी सफल फला
1: ब्रह्म ज्ञानी संग सगल उधार
0: नानक ब्रह्म ज्ञानी जपै सगल संसार
1: ब्रह्म ज्ञानी कै एक रंग
0: ब्रह्म ज्ञानी कै बसे प्रभ संग
1: ब्रह्म ज्ञानी कै नाम आधार
0: ब्रह्म ज्ञानी के नाम परवार
1: ब्रह्म ज्ञानी सदा सद जागत
0: ब्रह्म ज्ञानी अहम त्यागत
1: ब्रह्म ज्ञानी कै मन परमानंद
0: ब्रह्म ज्ञानी कै कर सदा आनंद
1: ब्रह्म ज्ञानी सुख सहजन वास
0: नानक ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश
1: ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म का बेता
0: ब्रह्म ज्ञानी एक संग हेता
1: ब्रह्म ज्ञानी कै होए अचिंत
0: ब्रह्म ज्ञानी का निर्मल मंत
1: ब्रह्म ज्ञानी जस करे प्रभ आप
0: ब्रह्म ज्ञानी का बड़ प्रताप
1: ब्रह्म ज्ञानी का दर्श बड़ भागी पाई है
0: ब्रह्म ज्ञानी को बल बल जाइए
1: ब्रह्म ज्ञानी को खोजे महेश्वर
0: नानक ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर
1: ब्रह्म ज्ञानी की कीमत नाही
0: ब्रह्म ज्ञानी कै सगल मन माहे
1: ब्रह्म ज्ञानी का कौन जाने भेद
0: ब्रह्म ज्ञानी को सदा आदेश
1: ब्रह्म ज्ञानी का कथया न जाए अदाखर
0: ब्रह्म ज्ञानी सर्व का ठाकुर
1: ब्रह्म ज्ञानी की मित कौन बखाने
0: ब्रह्म ज्ञानी की गत ब्रह्म ज्ञानी जाने
1: ब्रह्म ज्ञानी का अंत ना पार
0: नानक ब्रह्म ज्ञानी को सदा नमस्कार
1: ब्रह्म ज्ञानी सब सृष्ट का कर्ता
0: ब्रह्म ज्ञानी सद जीव नहीं मरता
1: ब्रह्म ज्ञानी मुक्त जुगत जी का दाता
0: ब्रह्म ज्ञानी पूर्ण पुरुष विधाता
1: ब्रह्म ज्ञानी अनाथ का नाथ
0: ब्रह्म ज्ञानी का सुख ऊपर हाथ
1: ब्रह्म ज्ञानी का सगल आकार।

0: जनक रावण करने जोग
1: ज्योतिष पावे सोई भोग
0: किनमें थाप उथापन हारा
1: अंत नहीं कुछ पारा
0: बारा में तार अदर रहावे
1: हुक्में उपजे हुक्म समावे
0: में ऊंच नीच व्यवहार
1: हुक्में आनिक रंग प्रकार
0: कर दे।

0: कबहु बिहारी नीच का साजा,
1: कबहु अपकीरत में आवे,
0: कबहु पला पला कहावे,
1: जो प्रभु राखे तिभी रहे,
0: गुर प्रचार नान सच कहे,
1: कबहु होए पंडित करे बख्यान,
0: कबहु मोन तारी लावे ध्यान,
1: कबहु तट तीर्थ स्नान,
0: कबहु सिद्ध साधिक मुख ज्ञान,
1: कबहु कीट हस्त पतंग होए जिया,
0: आनिक जोन जल में परमिया,
1: नाना रूप जो सुभागी दिखावे,
0: जो प्रपावे तिवे चावे,
1: जो तिस पावे सोई होए,
0: नानक दूजा अवर न कोए,
1: कबहु साध संगत ए पावे,
0: उस स्थान ते बोर न आवे,
1: अंतर होए ज्ञान परगास,
0: उस स्थान का नहीं विनाश,
1: मंतन नाम रते इक रंग,
0: सदा बसे पार रंग के संग,
1: जो जल में जल आए खटान।

0: संत के दुखन जमते ने छूटे,
1: संत के दुखन सुख सब जाए,
0: संत के दुखन नरक में पाए,
1: संत के दुखन मत होए मलीन,
0: संत के दुखन सुबाते हीन,
1: संत के हते को रखे ना कोए,
0: संत के दुखन थान प्रष्ट होए,
1: संत कृपाल कृपा जे करे,
0: नानक संत संग निंदक भी करे,
1: संत के दुखन ते मुख पवे,
0: संतन के दुखन काग ज्यो लवे,
1: संतन के दुखन सर्प जोन पाए,
0: संत के दुखन त्रित जोन किरमाए,
1: संतन के दुखन तृष्णा मह जले,
0: संत के दुखन सब को चले,
1: संत के दुखन ते सब जाए,
0: संत के दुखन नीच निचाए,
1: संत दुखी का थाओ को नाहे,
0: नानक संत पावे ताबी ओ भी गत पाए,
1: संत का निंदक महा अतताई,
0: संत का निंदक हिन टिकन न पाए,
1: संत का निंदक महा हत्यारा,
0: संत का निंदक परमेश्वर मारा,
1: संत का निंदक राज ते हीन,
0: संत का निंदक दुखिया अरदीन,
1: संत के निंदक को सर्व रोग,
0: संत के निंदक को सदा विजोग,
1: संत की निंदा दोख मह दोख,
0: नानक संत पावे ता उसका भी होए मोख,
1: संत का दुखी सदा अपवित,
0: संत के दुखी किसे का नहीं मित,
1: संत के दुखी को डान लाग गए,
0: संत के दुखी को सब त्याग,
1: संत का दुखी महा अहंकारी,
0: संत का दुखी सदा भिकारी,
1: संत का दुखी जन में मरे,
0: संत की दुख न सुख ते टरे,
1: संत के दुखी को नाही ठाओ,
0: नानक संत पावे तले मिलाए,
1: संत का दुखी अद बीच ते टूटे,
0: संत के दुखी किते काज न पहुंचे,
1: संत के दुखी को ध्यान परमाई,
0: संत का दुखी उजड़ पाई,
1: संत का दुखी अंतर ते थोथा,
0: जो सास बिना मृतक की लोथा,
1: संत के दुखी की जड़ किस नाही,
0: अपने बीजा पे ही खाए,
1: संत के दुखी को अवर न रखन हार,
0: नानक संत पावे तले उबार,
1: संत का दुखी यो विल लाए,
0: जो जल बिन में चली तड़ पड़ाए,
1: संत का दुखी भूखा नहीं राजे,
0: जो पाव की तन्नी त्रापे,
1: संत का दुखी छुटे इकेला,
0: जो बुआड़ तिल खेत माहे दुहेला,
1: संत का दुखी धर्म ते रहत,
0: संत का दुखी सद मिथ्या कहत,
1: किरत निंदा का तुर ही पया,
0: नानक ज्योतिष पावे सोए थिया,
1: संत का दुखी बिगड़ रूप होए जाए,
0: संत के दुखी को दरगह मिले सजाए,
1: संत का दुखी सदा सहकाई है,
0: संत का दुखी न मरे न जिवाई है,
1: संत के दुखी की